0: सारा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बटिया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में, पर जिंदगी में सुकून।
1: Appréciez la différence. Hit Radio 1 numéro 1.